0: Earth is just a dead thing, you can claim, but I know every rock and tree and creature has a life, has a spirit, has a name.
1: You think the only people who are people
2: are the people who look and think like you.
1: But if you walk the footsteps of a stranger,
2: you learn things you never knew.
1: You never knew.
3: Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or ask the grinning bobcat why he grinned?
4: Can you sing with all the voices of the mountains?
5: Can you paint with all the colors of the wind?
6: Come run the hidden pine trails of the forest. Come taste the sun's sweet berries of the earth. Come roll in all the riches all around you.
7: The heron and the otter are my friends, and we are all connected to each other in a circle in a hoop that never ends.
8: How high will the sycamore grow? If you cut it down, then you'll never know. And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon.
9: Or whether we are white or copper skin.
8: We need to sing with all the voices of the mountains. We need to paint with all the colors of the wind.
10: Mr. Oliver had been teaching in the school for several years. He's no longer there. The Shimla Bazaar, with its cinemas and restaurants, was about 2 miles from the school. And Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in the evening, returning after dark, when he would take the shortcut through a pine forest. When there was a strong wind, the pine trees made sad, eerie sounds that kept most people to the main road. But Mr. Oliver was not a nervous or imaginative man. He carried a torch, and on the night I write of, its pale gleam, the batteries were running down, moved fitfully over the narrow forest path. When its flickering light fell on the figure of a boy who was sitting alone on a rock, Mr. Oliver stopped. Boys were not supposed to be out school after 7 p.m., and it was now well past 9. "What are you doing out here, boy?" asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he would recognize the miscreant. But even as he approached the boy, Mr. Oliver sensed that something was wrong. The boy appeared to be crying. His head hung down. He held his face in his hands and his body shook convulsively. It was a strange, soundless weeping, and Mr. Oliver felt distinctly uneasy. "Well, what's the matter?" he asked, his anger giving way to concern. "What are you crying for?" The boy would not answer or look up. His body continued to be racked with silent sobbing. "Oh, come on, boy. You shouldn't be out here at this hour. Tell me the trouble. Look up." The boy looked up. He took his hands from his face and looked up at his teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face. If you could call it a face. He had no eyes, ears, nose, or mouth. It was just a round, smooth head with a school cap on top of it. And that's where the story should end, as indeed it has for several people who have had similar experiences and dropped dead of inexplicable heart attacks. But for Mr. Oliver, it did not end there. The torch fell from his trembling hand. He turned and scrambled down the path, running blindly through the trees and calling for help. He was still running towards school buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. Mr. Oliver had never before been so pleased to see the night watchman. He stumbled up to the watchman, gasping for breath and speaking incoherently. "What is it, Sahib?" asked the watchman. "Has there been an accident? Why are you running?" "I saw something horrible. A boy weeping in the forest and he had no face." "No face, Sahib? No eyes, no nose, mouth, nothing." "Do you mean it was like this, Sahib?" asked the watchman and raised the lamp to his own face. The watchman had no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. The wind blew the lamp out and Mr. Oliver had his heart attack.
11: Let me be myself. Let me lead my own life. I have figured myself out according to me. The absence of certain achievements should be left that way. Possession of everything ruins you. Your obscure world shines like broken pieces of glass in the evening sunlight. If you wish, you can float like a speck of dust. I won't follow you through the binoculars. I'm standing here on a sinking ship, all alone, and still I write tales of survivors. I don't want to keep within me the bickering and pleading of day and night. Still, I'm trying again and again to swim across to the shores. If one early morning you silently rediscover your love for me, don't search for me with those sleepy eyes. I'm not beside you anymore.
12: लोग सच कहते हैं, औरतें बेहद अजीब होती हैं। रात भर पूरा सोती नहीं, थोड़ा थोड़ा जागती रहती हैं। नींद की स्याही में उंगलियां डुबोकर दिन की बही लिखती, टटोलती रहती हैं दरवाज़ों की कुंडियां, बच्चों की चादर, पति का मन। और जब जागती हैं सुबह तो पूरा नहीं जागती, नींद में ही भागती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। हवा की तरह घूमती, कभी घर में कभी बाहर, टिफ़िन में रोज़ नई रखती कविताएं, गमलों में रोज़ बो देती आशाएं, पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती और चल देती फिर एक नए दिन के मुकाबिल, पहनकर फिर वही सीमाएं। खुद से दूर होकर भी सबके करीब होती हैं। औरतें सच में बेहद अजीब होती हैं। कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं चूल्हे पे चढ़ा दूध। कभी कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में ही छोड़कर ढूंढने लगती हैं बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब, बचपन में खोई गुड़िया, जवानी में खोए पलाश। मायके में छूट गई स्टापू की गोटी, छिपन छिपाए के ठिकाने, और वो छोटी बहन छिपके कहीं रोती। सहेलियों से लिए दिए या चुकाए गए हिसाब, बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब। खोलती बंद करती खिड़कियाँ, क्या कर रही हो, सो गई क्या, और खाती रहती झिड़कियाँ। ना शौक से जीती हैं ना ठीक से मरती हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। कितनी बार देखी है मेकअप लगाई, चेहरे के नील छिपाए, वो कांस्टेबल लड़की, वो ब्यूटीशियन, वो भाभी, वो दीदी। चप्पल के टूटे स्ट्रैप को साड़ी के फॉल से छिपाती वो अनुशासन प्रिय टीचर। और कभी दिख ही जाती है कॉरिडोर में जल्दी जल्दी चलती, नाखूनों से सूखा आटा झाड़ते। सुबह जल्दी में नहाई, अस्पताल में आई वो लेडी डॉक्टर। दिन अक्सर गुजरता है शहादत में, रात फिर से सलीब होती है। सच में औरतें बेहद अजीब होती हैं। सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती हैं, उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती हैं। और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं, तो ये सूखे कपड़े, अचार, पापड़, बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। खुशी के एक आश्वासन पर पूरा पूरा जीवन काट देती हैं, अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से पाट देती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। ऐसा कोई करता है क्या, रस्मों के पहाड़ों, जंगलों में नदी की तरह बहती, कोपल की तरह फूटती, जिंदगी की आँख से दिन रात इस तरह, और कोई झड़ता है क्या, ऐसा कोई करता है क्या। सच में औरतें बेहद अजीब होती हैं।
13: मेरी आरजू कैद है मेरे मन के पिंजरे में, जैसे कोई पंछी जिसका नसीब ही उड़ना है, उसके नसीब में उड़ना नहीं। छूना चाहती हैं गगन की ऊंचाइयों को, मगर वो कैद है। मेरा मन झांक रहा झरोखे से जैसे किसी अस्तबल में घोड़ा देख रहा खिड़की से मिटते हुए उसके पैरों के निशान और देख रहा हवा को फिर से पछाड़ने के लिए मगर वो कैद है मेरा मन बैठ किनारे देख रहा समुद्र को जैसे छिछले पानी की कोई मछली वास्तविकता ने तय कर रखे जिसके पानी के हिस्से नापना चाहती है वो समुद्र की गहराई मगर वो कैद है मगर वो कैद है
14: Hello friends, I am Lotungbeni from Department of Communication.
15: And I'm Wondangla from MA Comparative Literature.
14: The song we are going to sing now is Zai Zai Le from Lotanaga tribe. And then it means to strive and dwell for God.

I am a storyteller. I'm here to tell a story of storytelling, which means in Urdu, dastan goi. Dastan goi is an Urdu word which is comprises of two words, dastan and goi. Dastan means epic and goi means storytelling. Today, I'm going to narrate a dastan from Kabir Das. Kabir Das, a famous poet and writer, and the story goes like this. Ek gaon mein दो लड़कियां रहती थी, एक का नाम था सत्य और दूसरी का कहानी। दोनों बेहद खूबसूरत थी। सबको फक्र था कि सत्य और कहानी हमारे गांव में रहते हैं। दोनों सहेलियां थी, सांत खिलखिलाती थी, हंसती थी। एक बार की बात है, एक फकीर उनके घर में आया। फकीर ने उनसे बोला, बेटा थोड़ा सा खाना दे दो। उन दोनों ने बड़े ही प्यार से उसके लिए खाना पकाया। बाद में जाते वक्त उस फकीर ने उनको एक आईना दिया। आईने को देखते ही दूसरे को देख के इतराने लगे। सत्य को लगा वो बहुत खूबसूरत है और कहानी को लगा वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन इस खूबसूरती की लड़ाई में दोनों एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं और इस मुकाबले का नतीजा ये

पार चली। उसके बाद कहानी की बारी आई। कहानी ने अपना सिंदूर लगाया, काजल से अपनी आंखें सुनाई, अपनी चुन्नी लपेटी, लहंगा लहराया और बलखाती हुई वो गांव की सड़कों पे निकली। जैसे ही उसने गांव की सड़कों पे कदम रखा, लोग बाहर आने लगे, उससे बात करने लगे।

कहानी में सत्य के कंधे पे हाथ रखकर बोला कि बात दरअसल ये है कि लोगों को ना सच देखने की आदत नहीं है और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुमको अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो तुम्हें कहानी का हाथ तो थामना ही पड़ेगा, सच की खूबसूरती को कहानी में डालना ही पड़ेगा। लोग इस बात पे बहस करना कि कबीर धोती पहनते थे या लुंगी पहनते थे बेईमानी है, क्योंकि सच तो सिर्फ नंगेपन में है।